0: तुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, बताया क्यों नहीं मुझे?
1: क्योंकि तू उस किस्म की लड़की लगती नहीं है जो आर्मी ज्वाइन करने वाले लड़कों को डंप कर देगी।
0: नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन बंदा अगर मुझे अपनी दिल की बात ना कहे तो उसे डंप करने में मैंने 2 महीने नहीं लगने, समझ आई?

0: लाग्छ कि ब्रो कहिले मिल्दैछ कि ब्रो
1: राम्रोसँग ल मिलाइदे
0: राम्रोसँग ल गाइदे
1: साँच्चै
0: मुच्चै

जापानिज येन 10 को खरिदर 9 रुपैयाँ 76 पैसा, बिक्री दर 9 रुपैयाँ 80 पैसा। चाइनिज युआन 1 को खरिदर 23 रुपैयाँ 8 पैसा, बिक्री दर 23 रुपैयाँ 17 पैसा। सऊदी अरबियन रियाल 1 को खरिदर 41 रुपैयाँ 15 पैसा, बिक्री दर 41 रुपैयाँ 31 पैसा। कतारी रियाल 1 को खरिदर 42 रुपैयाँ 42 पैसा, बिक्री दर 42 रुपैयाँ खरिदर 42 रुपैयाँ 23 पैसा। मलेसियन रिङ्गिट 1 को खरिदर 37 रुपैयाँ 82 पैसा, माफ गर्नुहोला, मलेसियन रिङ्गिट 1 को बिक्री दर खरिदर 37 रुपैयाँ 42 पैसा, बिक्री दर 37 रुपैयाँ 96 पैसा। साउथ कोरियन 100 को खरिदर 11 रुपैयाँ 52 पैसा, बिक्री दर 11 रुपैयाँ 56 पैसा। स्विडिस कर्नर 1 को खरिदर 15 रुपैयाँ 51 पैसा, बिक्री दर 15 रुपैयाँ 57 पैसा। डेनिस कर्नर 1 को खरिदर 23 रुपैयाँ 19 पैसा, बिक्री दर 23 रुपैयाँ 28 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरिदर 19 रुपैयाँ 69 पैसा, बिक्री दर 19 रुपैयाँ 76 पैसा। कुवेती डिनार 1 को खरिदर 501 रुपैयाँ 31 पैसा, बिक्री दर 503 रुपैयाँ 26 पैसा। बराइन डिनार 1 को खरिदर 409 रुपैयाँ 11 पैसा, बिक्री दर 410 रुपैयाँ 70 पैसा। ओमानी रियाल 1 को खरिदर 401 रुपैयाँ 24 पैसा, बिक्री दर 402 रुपैयाँ 80 पैसा। श्रोता सुन्नुभयो आजको हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कद्वारा तोकिएको खुल्ला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अहिलेको लागि भने तपाईँहरू माझ राख्न चाहन्छु सबिन राईको अर्को निकै नै सुन्दर गीत तिमी बिना।